राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के

की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

0: Di sini siaran luar negeri Akaswani, Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

0: और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सिक्का संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत

0: suspended as a precautionary measure after water levels touched the danger mark at a railway bridge, which led to the cancellation and diversion of several trains, including Vande Bharat and Shatabdi. The state administration has urged citizens to avoid unnecessary travel and rely strictly on official advisories. Aparna Khond, Akashvani News, Ahmedabad.
1: The death toll in Assam due to floods has risen to 47, with 6 more deaths reported yesterday. Over 7.21 lakh people are affected by the floods in 11 districts across the state. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, began in Glasgow, Scotland, with a spectacular and colourful opening ceremony. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. The Indian contingent, led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain, marched with athletes waving miniature tricolours. The contingent received a warm welcome from the Glasgow crowd as India's athletes celebrated the start of their campaign. India opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75-kilogram semi-finals after receiving a bye. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today, headlines the Hindustan Times. The Pioneer headlines, PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines, PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UG paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने की खातिर मुतल्लिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसव्वदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि काबीना साथियों की

0: सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने अलबत्ता ये भी कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी, जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। TK अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत, जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीक की इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निज़ाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने तवील दूरी के ज़मीन से फिजा में वार करने वाले मिज़ाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नज़दीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि ये पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिज़ाइल निज़ाम लड़ाका जेट, हवाई जहाज़ों, मिज़ाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हम मनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्त सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामाने और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कानात पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, ज़रई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का अहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के क्याम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद

0: बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा दो रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 23वें दौरते मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए ओवीओ हाइड्रो अरीना में दाखिल हुई। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी शसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वह सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ज़रूरी इमदाद फराहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासिर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरते मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे भीमप्पा भजनंतरी तथा अल एहसान रशीदी द्वारा गायन राग नटभैरव। साथी कलाकार रहेंगे सारंगी पर नफीस अहमद और तबले पर इरफान हुसैन खान। आइए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का।

आधारित है। सत्य ही उनका ईश्वर है अर्थात साध्य है और अहिंसा ही उसे प्राप्त करने का साधन है। हालांकि वे खुद कहते हैं कि सत्य और अहिंसा सदियों से चले आ रहे सिद्धांत हैं। उन्होंने केवल इन्हें जीवन और उसकी समस्याओं पर लागू भर किया है, लेकिन उन्होंने इन शब्दों के जो अर्थ निकाले, जो व्याख्याएं की, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी सत्य के निरंतर अन्वेषक थे। उनका जीवन सत्य के प्रयोगों की एक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें सत्य मिल गया है। उन्होंने कहा कि वे सत्य की खोज में निरंतर लगे रहेंगे। उनके लिए सत्य एक आदर्श था जिसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन अनंत होने के कारण यह निरंतर दूर होता चला जाता था। गांधी जी ने ईश्वर को सत्य का पर्यायवाची माना। उन्होंने कहा, ईश्वर सत्य है, लेकिन अंततः उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है और उसी का प्रचार प्रसार किया। जब देखा कि ईश्वर को नकारने वाले तो बहुत हैं,

सत्य पर आधारित सत्याग्रह पूरी दुनिया को महात्मा गांधी की अनोखी देन है। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सत्य की शक्ति पर बल देने वाले विभिन्न सत्याग्रहों का आयोजन किया। इसके पहले वे दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे कई प्रयोग कर चुके थे। सत्याग्रह, जिसमें सत्य का अर्थ सत्य और आग्रह का अर्थ दृढ़ता है, सत्य के मार्ग पर चलने का संकेत देता है। वह सत्य का प्रदर्शन है जो प्रतिशोध नहीं चाहता, उत्पीड़क की अंतरात्मा को जगाकर उसे सत्य का दर्शन कराता है। यह दुर्बलों का हथियार नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल बलवानों के पास होती है। इसमें न तो घृणा का भाव है और न ही विनाश का। यह मानता है कि उत्पीड़क शत्रु नहीं है, बल्कि केवल सत्य से विमुख है और उसे सत्य जानने के लिए राजी किया जा सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक हानि न पहुंचाना आदि। गांधी जी कहते हैं, अपने सकारात्मक और व्यापक अर्थ में अहिंसा प्रेम और करुणा की सक्रिय शक्ति है। यह असीम प्रेम और परोपकार को दर्शाता है। इसमें बैर भाव का त्याग है। अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। अतः सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं, जो हमें प्रेम करता है उससे भी हम प्रेम करें, यह अहिंसा नहीं। अहिंसा तो तब है जब अपने विरोधी शत्रु या अपने से विद्वेष रखने वाले को भी प्रेम करें। अहिंसा में दीनता भीरुता बिल्कुल न हो, डर कर भागना भी नहीं होना चाहिए। अहिंसा में दृढ़ता वीरता तथा निश्चलता होनी चाहिए। अहिंसा कायर का कवच नहीं है, बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा शांति का अमोघ अस्त्र है। सत्य और अहिंसा के मेल से आप संसार को अपने चरणों में ला सकते हैं। गांधी जी मानते हैं कि सत्य उन्हें स्वाभाविक रूप से मिला, लेकिन अहिंसा को उन्होंने एक संघर्ष के बाद पाया है। अहिंसा का मतलब त्याग भी है। अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की नहीं। यही कारण है दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। निजी जीवन में अहिंसा और बाहरी जीवन में हिंसा, ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। उनका जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा के पालन का आग्रह है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र की परिधि से निकालकर इसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सभी प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करने का शस्त्र बनाया। इसे सार्वजनिक और सार्वभौम बनाया। सिर्फ राज व्यवस्था ही नहीं, संपूर्ण विश्व व्यवस्था को अहिंसा आधारित बनाने की उनकी कल्पना थी। वे कहते हैं, अहिंसा अगर व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है, वह करोड़ों की है। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं हैं, वह समुदाय जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। अभी हमने यह सिद्ध नहीं किया है, लेकिन यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। मेरा तो यही स्वप्न है, इसी को मैंने अपना कर्तव्य माना है। चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी श्रद्धा इतनी गहरी है, इसे सिद्ध करने के लिए ही मैं जीऊंगा और उसी प्रयत्न में मरूंगा। उन्होंने कहा, मुझे तो अहिंसा के सिवाय कोई दूसरा कुछ नहीं दिखता। मुझे विश्वास है कि अहिंसा की सदा जय होती है। जिस दिन यह प्रतीति हो जाएगी कि अहिंसा निष्फल है, उस दिन मेरे लिए मृत्यु ही विराम स्थान होगा। उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि भारत यह महसूस कर ले कि उसमें ऐसी आत्मा है जो कभी भी मर मिट नहीं सकती। वह शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर तमाम दुनिया की सारी शारीरिक ताकत को चुनौती दे सकती है और विजय प्राप्त कर सकती है। अहिंसा अचूक है, वह कभी नाकाम नहीं जाती। गांधी जी का दृढ़ मत था कि अहिंसा ही सत्य तक पहुंचने का सर्वोत्तम, सबसे सरल और एकमात्र मार्ग है। वे लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साधन सिर्फ साधन ही है। मैं कहूंगा कि साधन ही सब कुछ है। जैसा साधन होगा उसी तरह का फल मिलेगा। उद्देश्य की प्राप्ति उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में हम

साधनों की शुद्धता पर ध्यान देंगे। केवल अहिंसा के माध्यम से सत्य की खोज या साधना उन्हें सत्य के अन्य अनुयायियों से अलग करता है। गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के विचार मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि सत्य सबसे बड़ी शक्ति है और अहिंसा सबसे प्रभावी साधन। इन सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा विश्व को शांति और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के जरिए राष्ट्रीय नैतिकता को नई ऊंचाई दी। इससे संपूर्ण विश्व में भारत का

चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर विचार। आलेख एवं स्वर अभय प्रताप।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

ಮನೋಮಯ ಶಿವಾಲವನ ಶಿವಪ್ಪ

0: ಕಂಕಣ ಸೋನೆಯಾಚಿ ಕಂಕಣ
1: ಸೋನೆಯಾಚಿ ಕಂಕಣ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ

మాయవాచా భావనవ మాయవాచా దుకానాచా దుకానాచా మోడల వా దుకా.

0: Un.
1: وما جعلنا لبشر من

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्टर कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक

0: करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719

0: भारत ने कल हरारे में तीन मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over the NET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the house paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. Later, when the speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering, demanding resignation of Union Education Minister Dharmendra.

मैं हूं आपकी दोस्त राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल यानी एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी, और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज शुक्रवार है तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है बुजुर्गों को। जी हाँ, एक कदम बुजुर्गों की ओर। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। बुजुर्गों के अनुभव, संघर्ष और जीवन मूल्य नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। दादी नानी की कहानियां बच्चों को नैतिकता, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ती हैं। पारिवारिक व्यंजन जो दादी नानी के होते हैं ना, वो केवल भोजन नहीं होते बल्कि परिवार की संस्कृति और विरासत के वाहक होते हैं। और यही वरिष्ठ नागरिक हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो त्योहार, रीति रिवाज और लोक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, मगर आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के स्वरों में आपने ये गीत उजाला फिल्म से सुना। और मौसम की बात तो होगी और हम बात कर रहे हैं यादों की। यादें इंसान की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन के अनेक खूबसूरत पल स्मृतियों में बस जाते हैं। बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, पहली नौकरी, परिवार के साथ बिताए गए हर पल और पुराने दोस्तों की बातें हम सोचते हैं ना तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और ऐसा ही हमारे बुजुर्गों के साथ होता है। उनके पास ढेर सारी यादें होती हैं, वो यादें जो संजो रखी हैं उन्होंने अपने दिल में। ये यादें जीवन के उतार चढ़ाव से उबरने की ताकत देती हैं। और आज की तेज रफ्तार दुनिया में पुरानी यादों को संजोना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के अनुभव और उनकी स्मृतियां परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। आइए आज यादों के इसी आंगन में चलते हैं और सुनते हैं ऐसे गीत जो बीते दिनों की मधुर खुशबू को फिर से ताजा कर दें।

बचपन के दिनों की यादों को संजोना बेहतरीन अनुभव है कि आप वो सारी बातें याद रखिए जो बचपन में हुई थी। वो दिन भी क्या दिन थे ना। ये गीत हमने सुजाता फिल्म का लिया था, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाज़ में। अब माता पिता जो होते हैं वो परिवार की नींव होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग और संघर्ष करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत सम्मान, अपनेपन और साथ की होती है। उनका अनुभव परिवार को सही दिशा देता है। और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यदि हम रोज कुछ समय अपने घर के बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ बिताएं, उनकी बातें सुने, उनका सम्मान करें, और जब नानी के यहाँ जाएं तो नाना नानी की बात सुने, बड़ों का सम्मान करें, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्योंकि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद

वाद होता है, उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए उन सभी माता पिता को नमन करें और सुने ये गीत जो इस भावना को और गहराई से व्यक्त

राजा और रंग, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। सौ दशमलव एक में मेगा हर्ट्स पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, जिसमें बातें हो रही हैं हमारे बुजुर्गों के अनुभवों की, उनकी यादों की और उनके आशीर्वाद की। और हर उम्र अपने साथ कुछ नया सिखाती है, लेकिन जीवन के लंबे अनुभव से जो सीख मिलती है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। बुजुर्गों ने समय के अनेक रंग देखे हैं, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने संघर्ष भी देखा है और सफलताएं भी देखी हैं। उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। यदि परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह को महत्व दिया जाए तो कई समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा। उनके जीवन की कहानियां प्रेरणा देती हैं और हमें धैर्य, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाती हैं। और हमें उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनुभव उनके पास हैं वो कहीं से लिए हुए नहीं हैं, वो आजमाए हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत और संघर्ष किया है ना, उसी से उन्हें वो अनुभव मिले हैं। और जो हम अपनी ज़िंदगी में प्यार बांट पाते हैं ना, सच मानिए वो प्यार हमें उन्हीं से मिला है। और उन्होंने जो प्यार दिया है वही तो हम आगे बांट पाते हैं।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म में भी आपने आशा भोसले को सुना। एक समय था जब जीवन में सादगी थी, खुशियां भरपूर थी, परिवार के साथ बैठकर भोजन किया जाता था, मोहल्ले में अपनापन था, रिश्तों में आत्मीयता थी, मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन दिलों में प्यार बहुत था। चिट्ठियां लिखी जाती थी, त्योहार पूरे मोहल्ले के साथ मनाए जाते थे, हर खुशी साझा होती थी। बुजुर्ग आज भी उस दिनों को बड़े प्रेम से याद करते हैं, क्योंकि ये जो यादें हैं ना, ये उनके मन को बहुत सुकून देती हैं। दोस्ती और रिश्ते तो जीवन की सबसे सुंदर पूंजी होते हैं। समय बदल जाता है लेकिन सच्चे रिश्तों की मिठास कभी कम नहीं होती। बिताए हुए वो प्यारे पल हर वक्त यादों में ताजा रहते हैं। रिश्तों की गर्माहट जीवन को खुशहाल बनाती है। बुजुर्गों के लिए पुराने साथी और परिवार का साथ मानसिक और भावनात्मक संबल देता है। आज तकनीक के दौर में दिलों की दूरी कम करने की जरूरत है। आइए रिश्तों की इसी मिठास को याद करें वो लोरियां जो बचपन में हमने सुनी।

मन मंदिर फिल्म की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। देखिए, याद आ गया ना अपना बचपन कि मुन्ना जाएगा बाजार, हम भी बाजार जाया करते थे, सभी जाते हैं, 2 पैसे का 4 पैसे का, जब जो पैसा चल रहा होता है उसका सामान लाया जाता है। और दादा दादी नाना नानी परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं, उनकी कहानियाँ उनकी लोरियाँ जो होती हैं ना, जीवन में अनुभव संस्कार और मनोरंजन का अनोखा संगम होती हैं। उनकी बातें बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और परिवार की परंपराओं से जोड़ती हैं। उनके साथ बिताया गया समय जो होता है बच्चों के व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। आज के डिजिटल युग में भी उनकी कहानियों का महत्व कम नहीं हुआ है, ना ही उनकी लोरियों का महत्व कम हुआ है। और गुनगुना कर जो माँ और दादी लोरियाँ सुनाती हैं ना, उसी से और उनके सर पर जो हाथ फेरते हैं, माँ और दादी जो हाथ फेरती है, बच्चों के सिर पर स्नेही आशीर्वाद होता है। उनके ही मार्गदर्शन से परिवार मजबूत बनता है। उन प्यारे रिश्तों को याद करते रहें और उनको संजोते रहें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर की एक देन है। और जो उम्र होती है वो कभी भी सपने देखने या खुश रहने की राह में बाधा नहीं होती, इसलिए हमेशा हमारे बुजुर्गों को खुश रहना जरूरी है। सकारात्मक सोच, अच्छा स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली इंसान को हर उम्र में ऊर्जावान बनाए रखती है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक योग करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, यात्राएं करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। उनका उत्साह युवाओं के लिए प्रेरणा है। जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। और उत्साह के साथ सुनते हैं ये गीत, तो जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है।

स्टार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। और एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक चलता फिरता इतिहास है, कितने लोग मानते हैं इस बात को? जी हाँ, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वास्तव में एक चलता फिरता इतिहास है। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे सीखा है, इसलिए उनके अनुभव हमें न केवल अतीत से परिचित कराते हैं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि इतिहास की जीवंत साक्षी होते हैं। उन्होंने समय के कई दौर और जीवन में हुए अनेक परिवर्तनों को नजदीक से देखा है। उनके जीवन के अनुभव हमें उन घटनाओं, संघर्षों और मूल्यों से परिचित कराते हैं जिन्हें किताबों में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। उनके संस्मरण, उनकी जीवन कथाएं समाज की अमूल्य धरोहर हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी बातें बताते थे आज़ादी के दिनों की। बहुत सारी चीज़ें बताते थे कि 15 पैसे में ऐसा हो जाता था, 5 पैसे में ये होता था। अब पैसे, कौड़ी, ये सब चीज़ें तो बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जो पैसे और बाकी चीज़ें हैं जो पुराने इतिहास की हैं, समाज की हैं, वो बड़े बुजुर्गों से हमारे बच्चों को पता लगती हैं, हमें पता लगी, हमसे हमारे बच्चों को पता चलेंगी। तो इसलिए जो ये संवाद होता है ना, ऐसा लगता है मानो इतिहास के पन्नों को जीवंत रूप में पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपने भविष्य को अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ आकार दे सकती है। इसीलिए अपने बुजुर्गों को रूठने ना दें, और रूठ लें तो मना लीजिए फौरन।

आरजू फिल्में अपने लता मंगेशकर को सुना, और यही होना चाहिए हमारे बुजुर्गों के साथ भी कि अजी रूठ घर अब कहाँ जाइएगा। बुजुर्गों क्या, घर के हर रिश्ते के साथ यही होना चाहिए, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, यानी हर रिश्ते को मनाना हमारी जिम्मेदारी है और मान भी जाना चाहिए। यानी हम रूठे हैं तो दूसरा अगर कोई मनाए ना, फौरन मान जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संजो कर संभाल कर रखना पड़ता है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयकर दिवस की। भारत में हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है, करदाताओं के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मानित करने के लिए और कर भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए। और बड़े बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने में कैसे सहायता मिल सकती है वो हम आपको बताएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि करदाताओं की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी 70 वर्ष की आयु के आधार पर भी यही समय सीमा है, और धारा 80 TTB के तहत बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक की जमा पर मिलने वाले ब्याज में 50,000 रुपये तक की कटौती मिल सकती है 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को। धारा 194P के तहत विशेष छूट मिलेगी 75 वर्ष से जो अधिक हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, और जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है और आय का स्रोत केवल पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, उन्हें आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने बैंक में फॉर्म 12BBA जमा करना होगा, उसके बाद बैंक उनकी इनकम टैक्स योग्य आय की गणना करके TDS काट लेगा। और धारा 80 TTB, बुजुर्ग अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस और सहकारी बैंकों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं, और पेंशन भोगी अपनी पेंशन आय से 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड कटौती का लाभ उठा सकते हैं। और बुजुर्ग माता पिता यदि हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा खर्चों पर धारा 80D के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। अब दस्तावेज क्या चाहिए हमारे बुजुर्गों को, अगर आईटीआर फाइल करनी है तो बैंक पासबुक ले लीजिए, 26AS फॉर्म ले लीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और ब्याज के प्रमाण पत्र का निकाल लीजिए। कागज लेकर आप कहीं से भी आईटीआर भरवा सकते हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज से आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आमतौर पर ITR 1 यानी सहज फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये बहुत आसान है। आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर जाकर उनके पैन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है, और ये सब जानकारी वहां पर भी है जहाँ आप फॉर्म भरेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अंत में हम तो यही कहेंगे कि दादा और दादी का अनुभव, नाना और नानी का अनुभव, हमारे बुजुर्गों का अनुभव एक ऐसी अनमोल किताब है जिसमें जिंदगी जीने का असली सलीका, हर मुश्किल का समाधान छुपा होता है। और उनके दशकों पुराने अनुभव हमें न सिर्फ संस्कारी बनाते हैं बल्कि व्यवहारिक रूप से जीना भी सिखाते हैं।

रफ़ी और लता मंगेशकर के आवाज़ में ये गीत फिल्म दुनियादारी से है और कार्यक्रम घर आगम का यही अंतिम गीत है और इस कार्यक्रम से मुझे यानी राधा को दें इजाज़त, लेकिन सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उनके साथ बैठिए, समय बिताइए और उनके संघर्षों और अनुभवों का लाभ उठाइए, यही हम आपसे कहेंगे।

Langgan. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट

0: National Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आदाब, सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म से में हम बात करेंगे 1983 में रिलीज हुई बेहतरीन और भावुक रिश्तों से बंधी फिल्म, जो न केवल इंसानी रिश्तों के उलझे तानों बानों को दिखाती है बल्कि रिश्तों की जटिलताओं, मानवीय संवेदनाओं और क्षमा पर आधारित एक कालजयी कृति पर आधारित फिल्म है। जी हाँ, तो श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो है एक ही फिल्म से। जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि आज हम किस फिल्म की गलियारों से गुजरेंगे। तो करना क्या है, बस यही सही जवाब के साथ हमें ईमेल आईडी कर सकते हैं, यानी कि मैसेज करके हमें आप अपना संदेश भेज सकते हैं, जो कि है हमारा ईमेल आईडी ip.radiodelhi@gmail.com ip.radiodelhi@gmail.com। जो भी हमें सबसे पहले सही जवाब से रूबरू कराएगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब पाएगा। वैसे तो खिताब सभी पा चुके हैं, क्योंकि आप सभी हमें इतना बेहतरीन, बेहद प्यार से हमें अपने मैसेज भेजते हैं, तो हमारे लिए सभी फेवरेट हैं। लेकिन थोड़ा सा खेल तो बनता है ना, देखिए रहना है तो कुछ तो आपको कहना है ना, तो जल्दी से फोन उठाएं और हमें अपने सही जवाब भेजें, क्योंकि आपके सही जवाब का हमें रहेगा इंतजार। और इंतजार की घड़ियों को थोड़ा सा और खूबसूरत पल बनाने के लिए सुनते हैं इसी फिल्म से जुड़े ये गीत, जिसे सुनकर हर किसी के बचपन याद आ जाता है और हर किसी का जो बचपन है ना वो मुस्कुरा उठता है कुछ इस तरह से।

जी हाँ, ये गाना सुनकर किसको अपना अपना बचपन याद आ गया? मुझे तो आ गया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोताओं को भी आ गया होगा। और सही जवाब हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा है, हमारे सारे श्रोता जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। और सबसे पहले जिसने पहचाना है वो हैं हमारे अजीत भावस्कर जी, जो कि विरम गाँव गुजरात से हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब मिलता है। तो बिल्कुल हताश न होए, जो भी हमारे श्रोता हैं सारे ही हमारे लिए फेवरेट हैं। तो एक छोटा सा ये बहाना है, आपसे कुछ तो हमने कहलवाना है ना। तो हम आज बात कर रहे हैं 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम, जिसका निर्देशन शेखर कपूर जी ने किया था। और ये जो गाने की बात हम बात कर रहे थे अभी, लकड़ी की कांटी, दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान बच्चों को बिल्कुल स्कूल के माहौल जैसा माहौल दिया गया। कहते हैं ना कि अगर वही माहौल दो तो उसी तरीके से एक्ट भी अच्छा हो जाता है और उसी में रंग जाते हैं सभी। तो इसी तरह से स्कूल का माहौल दिया गया, और ताकि उनकी हंसी और शरारतें बनावटी ना लगें। यही वजह है कि आज का ये जो गीत है ना, बच्चों का आज भी फेवरेट है और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो हम बता रहे हैं इस फिल्म के बारे में, और फिल्मों में से एक फिल्म ये एक तो कहते हैं ना, शेखर जी की जो निर्देशन की ये फिल्म है, तो उनकी ये जो निर्देशित फिल्म है वो एक फिल्म उन फिल्मों में से एक है। इसने उन्हें एक ऐसा खिताब दिया, संवेदनशील निर्देशक का। जी हाँ, उनकी जो पहचान बनी वो इसी फिल्म से बनी। कहा जाता है कि ये फिल्म अंग्रेजी उपन्यास मैन वुमेन एंड चाइल्ड, इस फिल्म से प्रेरित थी। इस फिल्म से में जो किरदार थे वो तो आप सभी जानते हैं, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जुगल हंसराज, उर्मिला मातोंडकर, आराधना एक बाल कलाकार के रूप में काम करा था, और सईद जाफरी जैसे कलाकारों ने अपना अभिनय देकर इसे और खास बना दिया। और आप हमें मैसेज कर रहे हैं, इससे भी आप हमारे इस कार्यक्रम को खास बना रहे हैं। और फिर हमें राजकुमार जी ने मैसेज किया है जिला हिसार से, और उसके बाद हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं पहले ये वाला नगमा।

वाह, ये आवाज भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज का इतना बेहतरीन गीत, और कहते हैं एक ही धुन लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। जी हाँ, पंचमदा यानी आर डी बर्मन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उनकी फिल्म में, ये जो फिल्म है ना, इसमें वाद्य यंत्र बहुत ही सीमित थे, बहुत ही कम थे, लेकिन उनका जो संगीत है इतना हावी हुआ कि दिलों पर छा गया। और हम बता दें कि हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म डी के की है, जिसका रोल है नसरुद्दीन शाह ने निभाया और इंदु का रोल शबाना आजमी ने निभाया। और उनका एक खुशहाल वैवाहिक जीवन से शुरू होती है कहानी। उनकी दो बेटियां पिंकी यानी उर्मिला मातोंडकर और मिनी यानी आराधना बाल कलाकार के रूप में काम किया। कहानी में तूफान तब आता है जब डी के को पता चलता है कि अतीत में एक रिश्ते से उनका एक बेटा भी है और जिसका नाम राहुल है। राहुल का किरदार निभाया बाल कलाकार जुगल हंसराज जी ने। और राहुल की मां की मौत के बाद उसे डी के घर आना पड़ा। पति के धोखे से टूटी इंदु के लिए उस अनाथ बच्चे को अपनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिससे वो पूरे घर में भावात्मक एक फीलिंग्स जो होती हैं वो उथल पुथल हो जाती हैं, सबके दिल टूट जाते हैं। कहा जाता है कि रिलीज के शुरुआती दिनों में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे, लेकिन जब किसी एक ने देखा और फिर उसने दूसरे को बताया, कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी के बाद सिनेमा घर में भीड़ जुटने लगी और बाद में ये ब्लॉक बस्टर साबित हो गई। हमारे पास मैसेज आया राजकुमार दादू जी का, उसके बाद हमारे पास अजीत भास्कर जी ने जिन्होंने सही जवाब दिया है आज हमें, सुदर्शन मुखी जी, अनीता सिमरन जी शांतिनगर से, और भूषण खेरा जी ने पंजाब से।

हमें मैसेज किया है, और इसी तरह से डूल राणा जी ने हमें मैसेज किया है, सुनील पाठक जी ने हमें मैसेज किया, कमल पाठक गायक मल्होत्रा अनारकली पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं, हीरामणि वर्मा भाटापारा से हमें मैसेज कर रहे हैं, आर कुमार जी वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार जी हमें मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, सभी ने सभी सही जवाब दिया, बस सबसे पहले जिसने दिया बस वही एक खेल था हमारे साथ। नमस्कार। और हमें सुरेश जाटकर जी ने हमें मैसेज किया है, बेबी उर्मिला मतौड़कर, सुरेश जाधव, अनीता जाधव, नेहरू चौक, इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए, और सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा।

हाँ, जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, और ये गाना जो है ना दिल को छू जाता है। आज भी अगर कोई सुनता है तो उसे अपनी जिंदगी की वही पिछली उथल पुथल याद आ जाती है, वो सभी की जिंदगी में होती है। तो कभी भी परेशान ना होए, और ऐसा लगता ना कि गुलजार साहब ने ये गीत के जो बोल लिखे वो एक मात्र पात्र नहीं थे, बल्कि एक जिंदगी का एक सवाल है जो हमसे, हम अपने आप से खुद से पूछ रहे हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ नहीं जनाब, ये सभी के साथ होता है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, तो निराश और उदास कभी ना होए। कहते हैं ना, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। अब हम इस गीत के दो संस्करण रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि एक लता मंगेशकर की आवाज़ में और दूसरा अनूप घोषाल, जो कि अभी आपने सुना। दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में फिल्माए गए, इसलिए दोनों का भाव भी अलग है। जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम, और आज हम लेकर हाजिर हैं फिल्म मासूम। श्रोताओं, कहा जाता है कि इस फिल्म के गीत और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए पहले जावेद अख्तर साहब को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होने के कारण बाद में ये काम गुलजार साहब को सौंपा गया। गुलजार साहब ने अपने गीतों में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के रिश्तों को, एक कहते ना रिश्तों की जो टूटन और जुड़ाव जो था ना, बेहद सरल भाषा में देकर उन गीतों को इतना बेहद भावुक बना दिया कि आज सुनते हैं तो आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ ही जाते हैं। बिट्टू गनेजा जी, हमें सुरेश गंगेजा और पूनम जी ने हमें मैसेज किया है, पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और निर्मला विशाल नावकर और उर्मिला माथौन जुगल हंसराज ने, उन्होंने जवाब दिया है कि बाल कलाकार थे अजीत भास्कर जी ने, और नरेंद्र सुथर जो नमस्कार रैना जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नौहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार जी ने हमें मैसेज किया है, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से रोहित वशिष्ठ जी ने हमें मैसेज किया है, प्रेम सागर, शोभा लता, और नाभा जिला पटियाला पंजाब, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमोत कौर, और धर्मेंद्र शिपा जी, स्वर्ण सिंह जी, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अभिराज, प्रकाश वर्मा जी, प्रिंस निखिल यशस्वी, और राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्होंने हमें और भी, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसी तरीके से मैसेज करते रहिए। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबली रोड अकोला से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं ये अगला नगमा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा।

हमें मैसेज किया है दिलदार मेरी ज्योति जानवी दिशांत जी ने और संजय ढींगिया जी ने, नमन ढींगिया पा ढींगिया और भागवत वर्मा, शांति लीलावती विनीता रुद्र और पिपरिया से कमलकांत, दीपा रिमझिम, मुकेश, श्रद्धा, राधे, दीपक, अंकु, अदिति और जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस, डिक्रेस तो, और इन्होंने हमें मैसेज किया और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत जी इन्होंने मैसेज किया, मुकेश भाटा जी ने मैसेज किया है, लालगिरी जी ने हमें, गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। निसार अली जी ने भी हमें मैसेज किया है।

जी हाँ, मासूम उस वर्ष की सबसे बेहतरीन और संवेदनशील पारिवारिक फिल्मों में से एक थी, जिसे कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। तो श्रोताओं, समय की पाबंदी की वजह से रैना तंवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म, उससे जुड़े अनसुने किस्सों सदाबहारों और यादगार फिल्म उससे जुड़े अनसुने किस्से और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून। एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: और अब समय हुआ है हमारे न्यूज़ सुनने का, तो अब सुनते हैं पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। नीट मुद्दे ते लगातार हंगामे कारण लोकसभा सोमवार तक उठा दिती गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक उठा दिती गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ते राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी नू नीट यूजी पेपर लीक तो बाद सुधारा नू लागू करन विच होई प्रगति बारे वेरवे सहित हलफनामा दायर करन दा निर्देश दिता है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अज एक कथित बैंक धोखाधड़ी नाल जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले दे संबंध विच पंजाब, दिल्ली ते उत्तर प्रदेश विच 8 थावां ते तलाशियां लईआं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर विच हो रहे दमन नू नजरअंदाज करन लई संयुक्त राष्ट्र प्रति निराशा प्रगट कीती है। ते भारत दी अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद विच लगातार 5वें दिन हंगामा जारी रहन कारण लोकसभा दी कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दित्ती गई है। पहली बार उठाए जाण तो बाद जदों सभा ने दोपहर 12 बजे अपनी कार्रवाई मुड़ शुरू कीती तां संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन तो ही नीट पेपर लीक मुद्दे ते चर्चा करने लई तैयार है। उन्हें कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों लाईया गई कुछ शर्तां कारण चर्चा रुकी हुई सी। उन्हें यह भी कहा कि सारे मैंबर इस मुद्दे ते उसारू चर्चा की इच्छा रखते ने। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नू भरोसा दिता है कि पेपर लीक मामले नू हल करन लई सख्त कानून बनाए जाणगे। श्री रिजिजू ने कहा कि नीट पेपर लीक मुद्दे का विरोध कर रहे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी चर्चा की जरूरत पर जोर दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर संसद मैंबर चर्चा तो बचते ने ते बहाने बनाते ने तो यह देश नू नकारात्मक सुनेहा भेजेगा।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: इस तो पहला नीट पेपर लीक नू लैके विरोधी धिर दे विरोध अते विद्यार्थियों दे मुजाहरियां दे मुद्दे ते संसद दे 2 सदनां नू दुपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। जदों लोकसभा ने सवेरे 11 बजे अपनी कार्रवाई शुरू कीती तां सदन ने करगिल जंग विच सर्वोच्च कुर्बानी देण वाले भारतीय हथियारबंद फौजां दे शहीदां नू श्रद्धांजलि भेंट कीती। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 26 जुलाई नू कारगिल विजय दिवस की 27वीं वरेगंढ है। उन्हें कहा कि यह दिन फौजियां दी अदुत्ती हिम्मत, बहादुरी अते सर्वोच्च कुर्बानी का प्रतीक है। श्री बिरला ने भी कहा कि कारगिल जंग दौरान भारतीय हथियारबंद फौजां दे बहादुर फौजियां ने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा लई मुश्किल पहाड़ी इलाकियां, मुश्किल हालात अते खराब मौसम का सामना करते हुए बेमिसाल हिम्मत अते दृढ़ता का विखाला किया। उन्हें कहा कि पूरा देश इन अमर शहीदों का हमेशा कर्जदार रहेगा जिन्होंने मातभूमि की सेवा विच अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। शहीदां दी याद विच सदन विच मौन भी रख्या गया। नीट पेपर लीक मामले ते राज्यसभा दी कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। जदों दोपहर 12 बजे पहली बार मुलतवी होण तो बाद सभा दी कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तां सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करन दी कोशिश कीती पर विरोधी धिर ने सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफे दी मांग करदे होए रौला रप्पा जारी रख्या। इस तो बाद सदन नू दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। राज्यसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे शुरू होने ते भी सदन ने कारगिल जंग दे शहीदां नू श्रद्धांजलि दित्ती। सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 दी कारगिल जंग विच भारत दी जित दी याद दवांदा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सभा हथियारबंद बलां प्रति अपनी डूंगी शुक्रगुजारी प्रकट कर दी है। फौजियां दे सम्मान विच राज्यसभा विच भी मौन रख्या गया। इस तो बाद स्पीकर ने सिफरकाल शुरू करने की कोशिश की थी अते विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक अते इस मामले ते विद्यार्थियों दे विरोध दा मुद्दा उठाया। रौले रप्पे तो बाद सदन नू दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कीता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने विभागां नू पेपर लीक नाल निजिठण लई फास्ट ट्रैक

0: दी गई। आज पहली मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA को हिदायत दी है कि वो नीट UG पेपर लीक के बाद की गई इस्लाहात पर अमल दरामद में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में तफसीली हलफनामे दाखिल करे। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य पर मुश्तमिल एक बेंच ने नीट पेपर लीक केस की समाअत करते हुए कहा कि इस हलफनामे में उन इकदाम का लाजिमी तौर पर जिक्र किया जाए जो इस्लाहात को इदारा जाती बनाने के लिए किए गए हैं, न कि उन इकदाम का जिक्र किया जाए जो इस सिलसिले में आरजी तौर पर किए गए हैं। बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कहा कि हुकूमत बच्चों के इन मामलों से निमटने के लिए काफी आगे तक कार्रवाई करने को तैयार है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा से अफसोस जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके जेर कब्जा कश्मीर में लोगों की आवाज दबाए जाने को नजरअंदाज कर रही है, जबकि उसने दूसरी जगहों पर इस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर POK में अवाम के हकूक को मुनजम तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P Harish ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हकूक की पामाली और मकबूजा कश्मीर नीज पूरे मुल्क में आजादी को कुचलने के वाकयात का जिक्र किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश, अजमे मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत, काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरगीब फराहम होगी। स्क्वॉश में भारत की अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वो क्वार्टर फाइनल में मिस्र की हबीबा रिज्क को 11-7, 11-5, 6-11 और 11-9 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जहां उनका मुकाबला मिस्र की खिलाड़ी बार्ब सामेह से होगा। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेजी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सजा देने की तजवीज से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाकयात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और NTA को हिदायत दी हैं कि वो नीट UG पेपर लीक के बाद इस्लाहात पर अमल दरामद में पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अक्वामे मुत्तहिदा के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures

0: मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2014

0: 26 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और

0: देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कम्बाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड $25 trillion। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क़ को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप सभी समझ चुके होंगे आज के हमारे कलाकार हैं मनोज कुमार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही खास है। आज जैसा भी हमने नाम लिया, एक ऐसे सितारे की हम बात कर रहे हैं जिनकी अदाकारी में सिर्फ एक कलाकार की चमक ही नहीं बल्कि देश का स्वाभिमान भी झलकता है। इनके हाथ का गाल पर आने का स्टाइल आज भी हमारी यादों में बसा है, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से भारत कुमार कहती है। जी हाँ, सिनेमा के सबसे देशभक्त और सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार जी, आज उनका जन्मदिन भी है। अगले आधे घंटे तक हम उनकी जिंदगी के पन्नों को टटोलेंगे, उनके उन गीतों की यात्रा करेंगे जो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए इस संगीत में सफर का आगाज करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

श्रोताओं, जब भी हम ये गीत सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना स्वतः ही बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार जी का असली नाम क्या था? चलिए हम आपको बताते हैं। मनोज जी का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था, और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मनोज जी दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दिलीप जी की एक फिल्म आई थी शबनम, उसमें एक चरित्र था जिसे देखकर मनोज कुमार इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। कांच की गुड़िया से शुरुआत की, लेकिन पहचान मिली फिल्म हरियाली और रास्ता और वो कौन थी से। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक और खूबसूरत गाना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मनोज जी को भारत नाम कैसे मिला? चलिए आपको इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। 1965 के युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फिल्म शहीद देखी। वे मनोज जी को उनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने का आग्रह किया। मनोज जी ने ट्रेन के सफर में ही उपकार की कहानी लिखी और यहां से जन्म हुआ एक नए चरित्र भारत का। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक और खूबसूरत गाना।

और पश्चिम में उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और भारतीय मूल्यों के बीच जो संतुलन पेश किया और जनता को दिखाया वो आज भी प्रासंगिक है।

अर्जी आज भी हमारी पीढ़ी के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। सिनेमा में उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका स्टाइल, उनके लिखे संवाद, उनके गीतों का राष्ट्रप्रेम हमेशा हमें प्रेरित करेगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर, और आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडी। जी हाँ, हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब गीत सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे, जब मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ें दिलों की धड़कनों को छू जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं

हाँ, ये खूबसूरत सा नगमा था फिल्म जाल का, जो कि 1952 में रिलीज हुई थी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, और आवाज थी हमारे हेमंत कुमार और आशा भोसले जी की। तो हमने ये जो आवाज थी, कितनी खूबसूरत आवाज होती है, और उस तरफ जो गाने होते थे ना, जो गीत होते थे, वो दिलों को छू जाते थे। और ऐसा लगता था कि ये हमारे जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पल हैं जो हम एक दूसरे से इन गीतों के जरिए बयां करते हैं, है ना। और पुराने गानों की बात अगर कही जाए, यानी कि गोल्डन इरा का ये समय रहा, और वो ऐसा रहा कि गोल्डन ईयर इसलिए कहा जाता है कि वो सदा बाहर गाने रहे, हमेशा वो दिल को छू जाते हैं और हमें हर पल याद आते हैं। कभी हम सोचा होगा, हम अंताक्षरी खेलते हैं तो अक्सर हमें नए गीतों की याद नहीं आती, हमें ये गीत अचानक हमारे लबों पर आ जाते हैं। सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोए हुए हैं कि दिल को और दिमाग पर ऐसे छा जाते हैं कि कभी भी कोई भी मौसम हो तो मौसम के हिसाब से हमें गाने याद आ जाते हैं, कोई लम्हा हो तो उसके हिसाब से हमें गाने याद आ जाते हैं, है ना। और कुछ इस तरह से एक अगला हम नगमा सुनेंगे जो बेहद ही खूबसूरत है। खैर, इस गाने के बारे में हम आप बताना चाहेंगे कि इस गीत के जो संगीतकार SD बर्मन, और हम कहते हैं ना कि कहा जाता है कि उन्होंने इनकी धुन जो थी बहुत ही सहज बनाई गई थी। रिकॉर्डिंग के समय पूरा स्टूडियो जो था मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता था। इस तरह के गीत SD बर्मन साहब लिखा करते थे, और संगीतकार मतलब इस तरह के गीत संगीत दिया करते थे। तो चलिए सुनते हैं ये अगला एक नगमा, खूबसूरत सा,

जी हाँ, तेरी नीली नीली आंखों के ये गाने सुनते हैं तो वो दिन, वो दौर, वो समय, वो सब कुछ याद आ जाता है। और 1950 का जो दशक है ना, वो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि कहते हैं ना, शहरों में बसते सपनों का वो दौर था। इस गीत में भी एक ऐसी खूबसूरती थी जो दिल को छू गई। क्यों, सही कहा ना, ये फिल्म है टैक्सी ड्राइवर की। हमने सुना ये गीत बहुत ही खूबसूरत सा, और आवाज़ जो थी वो थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। तो जो कहते हैं ना कि सदाबहार आवाज़ें, सदाबहार दिल पर बसने वाली, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़। जी हाँ, जो कि गोल्डन इरा के दौर का गाने हम इसमें पेश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। और हमारे पास मैसेज करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेज सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। ये कार्यक्रम होस्ट कौन कर रहा है आप सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं हूँ राना तंवर, और कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी आकाशवाणी वाणी इंद्रप्रस्थ पर आप सुन रहे हैं। और हमें बहुत सारे मैसेज आप करके भेज कर अपनी प्रतिक्रियाएं जैसे भेज सकते हैं, ipradiodelhi@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, और आप बेहद अच्छे से जानते हैं, हम फिर भी दोबारा बताएंगे, ipradiodelhi@gmail.com। इस पर आप हमें अपने भाव व्यक्त करके भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। हमें भेजा है सुदर्शन मुखी जी ने भी मैसेज भेजा है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शांतिनगर से अनीता मुखी सिमरन, और इसी तरीके से हमें अजीत भास्कर जी ने भी मैसेज किया है। और आप सभी इसी तरह से जुड़े रहें, और सुनते हैं अगला एक नगमा जो कि है हमारे फिल्म श्री 420, 1955 में बनी फिल्म, जिसके गायक थे मन्ना डे और लता मंगेशकर। और ये गाना सुनकर ना सच में कुछ कुछ तो होता है।

जी हाँ, ये इस तरह के गीत हैं जो दिल को कुछ कुछ कह जाते हैं, है ना। जब हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं तो ये गाने बहुत काम आते हैं। और ये फिल्म का गीत था श्री 420, जिसमें सिंगर थे लता मंगेशकर, प्रबोध चंद्र दे, मन्ना डे जिन्हें कहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर दिए जय किशन, दया भाई पंचाल, शंकर सिंह रघुवंशी, और इसे लिखा शैलेंद्र जी ने। और इस जो फिल्माया गया था वो राज कपूर, नरगिस जी थी। और इस तरह से खूबसूरत से जो हम गीत सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलेडी, आपकी दोस्त और होस्ट रहना तवर के साथ। अब हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मोहम्मद ये शमशेद बेगम की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

जी हाँ, कौन कौन यहाँ पर मुस्कुराने लगा, गीत सुनकर डांस करने लगा। तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे खूब मस्त डांस कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोता भी इसी तरह से कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। और अभी हमें मैसेज किया है अमीना तक्कान जी ने, और उन्हें कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। मास्टर अशोक कुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्हें भी ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। और शेख साहब जी, अजीत भावस्कर जी, उन्होंने हमें मैसेज किया है कि उन्हें ये गीत बहुत पसंद आया है। और इसी तरीके से हमें मैसेज करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं कि आपको गाने किस तरह से लग रहे हैं और आप क्या गाने सुनना चाहते हैं। ये 3 से 3:30 बजे कार्यक्रम होता है मैटिनी मैलिटी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज सकते हैं, अपने आप बता सकते हैं कि आप पुराने गानों में क्या गाने सुनना चाहेंगे, तो हम उन्हें शामिल जरूर करना चाहेंगे। जी हाँ, अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है रफ़ी साहब की आवाज़ का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: जी हाँ, अभी सुन रहे हैं आप चौदहवीं का चांद मूवी से ये वाला नगमा। और ये है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं रविशंकर शर्मा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। और अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ का खूबसूरत नगमा।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: तो दोस्तों, मैटिनी मेलेडी से मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ 50 और शुरुआती 60 के दशक में इन सुनहरे नगमों ने आपकी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया होगा। तो मैं यानी कि राणा तवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर मिलेंगे सिनेमा घर के एक नए और सुनहरे सफ़र के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें मैटिनी मेलेडी और आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त, है ना? तो अच्छे नेक इंसान बने और अच्छे काम करें, एक ऐसा काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून। तो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ आपका।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 3 बजने को हैं और अब समय है हमारे कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

सामईन, अभी आप वारसी ब्रदर्स और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में यह कव्वाली सुन रहे थे। सामईन, कव्वाली के बोल अपने अंदर वो सहर रखते हैं कि दिल झूम उठता है और सारी फिजा सहर में डूबी हुई नजर आती है, और दिल ऐसा मसरूर होता है और चाहता है कि इस सहर से बाहर ही न निकले। तो ऐसे ही एक सहर आमेज कव्वाली से महसूस होते हैं और सुनते हैं कामिल हैदराबादी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली।

सामिन, अभी आप कामिल हैदराबादी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली सुन रहे थे। सामिन, सूफिया इकराम जो इबादत गुजार थे, वो चाहते थे कि उनका पैगाम हर जगह पहुँचे। कव्वाली की शुरुआत सूफी सिलसिले से हुई थी, जिसका मकसद कव्वाली के ज़रिए लोगों को खुदा के करीब लाना था और खुदा के वजूद का एहसास दिलाना था। आइए सामाइन सुनते हैं अब्दुल हमीद साबरी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: 방금은请收听同一部电影的另外一个歌曲，请你们享受。
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता, हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से हमारे खेलों से जुड़ा खेल कार्यक्रम। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं
2: हेमंत
1: और मैं लेकर के चलेंगे आपको खेल जगत के उस सफर पर जहां पर हम आपको अपडेट कराएंगे हर एक खेल गतिविधि से। तो आज के इस कार्यक्रम में जिन खेल खबरों को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की,
2: बात करेंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 मुकाबले की,
1: इसके साथ साथ शूटिंग में किसका लगा है पदक पर निशाना इसके बारे में भी आपको बताएंगे,
2: और साथ ही चलेंगे यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप की तरफ।
1: इसके साथ साथ अन्य खेल गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो उसके साथ जो कि खेली जा रही है ग्लासगो में, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ, जहां पर अभी तक भी बहुत सारे उलटफेर जो है भारतीय दृष्टिकोण से हो चुके हैं, लेकिन क्या कुछ खास अब तक हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में, आइए सुनते हैं।
3: The Commonwealth Games.
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही 11 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ का औपचारिक आगाज हो गया। उद्घाटन समारोह में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने पारंपरिक परेड ऑफ नेशंस में हिस्सा लिया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्कॉटिश कलाकारों के शानदार प्रदर्शन के बीच खेलों का उत्साह चरम पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल ने शानदार अंदाज में प्रवेश किया। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ी हाथों में तिरंगा थामे परेड ऑफ नेशंस का हिस्सा रहे। समारोह के दौरान

0: भारतीय दल का उत्साह और जोश देखने लायक रहा, जबकि पूरे स्टेडियम में तिरंगे की मौजूदगी ने हर भारतीय के लिए गर्व का पल बना दिया।
1: एथलीट्स फ्रॉम इंडिया, ओलंपिक जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा इज द बिग अट्रैक्शन। ही वन गोल्ड एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। बॉक्सर नोवलिना बोर्गेन इज बैक एज वेल एंड ब्रिंग्स इन द बैटन। Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist, Mirabai Chanu carries the India flag.
0: इस रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही भारत ने भी पहले ही दिन जीत के साथ शानदार आगाज किया। लॉन बॉल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा, जहां पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर सबको चौंका दिया। वही महिला जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी ने भी जीत से भारत का खाता खोला। अब नजरें दूसरे यानी आज के दिन पर हैं, जहां जिम्नास्टिक से लेकर बॉक्सिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग तक भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक चुनौती पेश करेंगे। आइए जानते हैं आज भारत के खेलों का शेड्यूल क्या रहने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन पूरे जोश के साथ जारी है। दोपहर के मुकाबलों की शुरुआत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के साथ हुई, जिसमें तपन मोहंती, स्वाथिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह ने पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भारत की चुनौती पेश की। इसके बाद पैरा स्विमिंग के पुरुष S13 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में रवि वीरा, वेंकट भवानी, कार्तिक बुडिगना और इमाम अली ने पूल में अपना दमखम दिखाया। भारत के स्टार तैराक श्रीहरि नटराज ने पुरुष 50 मीटर बैक स्ट्रोक हीट्स में अपनी रेस पूरी की। अब शाम के मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले हैं। शाम 5:40 पर पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में अशोक और परमजीत कुमार भारत की ओर से चुनौती पेश कर रहे हैं। शाम 7:30 पर एक बार फिर निगाहें लॉन बॉल्स पर होंगी, जहां पहले मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज करने वाली भारत की अनुभवी जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले में उतरेंगी। पहले मैच में भारतीय जोड़ी ने माल्टा को कड़े संघर्ष के बाद टाई ब्रेक में हराया था। भारत ने पहला सेट 7-1 से अपने नाम किया, लेकिन माल्टा ने दूसरे सेट में 4-3 से वापसी करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद टाई ब्रेक में पिंकी के शानदार निर्णायक शॉट की बदौलत भारत ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली। अब ये अनुभवी खिलाड़ी भारतीय जोड़ी उसी आत्मविश्वास के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से मैदान पे उतरेगी। इसी के साथ रात 10:20 पर एक बार फिर सभी की निगाहें लॉन बॉल्स के स्टार खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल पर होंगी। पहले ही मुकाबले में पुतुल ने मौजूदा विश्व चैंपियन कनाडा के रैन बेस्टर को रोमांचक मुकाबले में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। पहले सेट में पुतुल ने 5-4 से बढ़त बनाई, दूसरे सेट में रैन बेस्टर ने 7-3 से वापसी की। इसके बाद मुकाबले का फैसला टाई ब्रेक में हुआ, जहां पुतुल सोनोवाल ने 1-0 से जीत दर्ज करके भारत के लिए यादगार शुरुआत की। अब उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड के सिसिल अलेक्जेंडर से होगा, जिसमें भारतीय प्रशंसकों को उनसे एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसके बाद 10:40 पर महिला हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजामणि भारत की चुनौती पेश करेंगी। वहीं रात 11:00 से बॉक्सिंग में भी 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह का जादू चलता हुआ नजर आएगा। जादूमणि का सामना मेजबान स्कॉटलैंड के एरान कलन से होगा। और दिन के आखिरी मुकाबले में रात 12:29 पर पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष हैवीवेट वर्ग में सुधीर और झंडू कुमार भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि इन सभी मुकाबलों में से कौन से खिलाड़ी पदक के लिए दावेदारी पेश करते हैं और कौन से खिलाड़ी को लगती है निराशा हाथ। बने रहिए कॉमनवेल्थ गेम्स की हर एक अपडेट के लिए आकाशवाणी के साथ।
2: दिस इज द कॉमनवेल्थ गेम्स। This is Glasgow.

0: कॉमनवेल्थ खेलों में जो इस वक्त की अपडेट है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने जैसा अभी बताया कि कुछ मुकाबले जो हैं वो दोपहर को ही शुरू हो चुके हैं, तो उनके रिजल्ट जो हैं वो हम सबके समक्ष हैं। इस वक्त जो भारतीय तैराक हैं श्री हरि नटराज, उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा की हीट में 25.52 सेकंड का समय निकालकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है हेमंत। और नटराज ने 16 क्वालिफायर में 14वें सबसे तेज तैराक के रूप में जगह बनाई है और वो आज देर रात सेमीफाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसी के साथ साथ आज पैरा तैराकी जो है उसके भी मुकाबले हुए हैं, तो बुडिगिना और अली इमाम जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत के लिए एक और खुशखबरी है, तो भारत के रवि वीरा वेंकट बुडिगिना और अली इमाम ने पुरुषों की S13 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बुडिगिना ने हीट में 57.10 सेकंड का समय निकल 3रा स्थान हासिल किया है। वहीं अली इमाम ने 1:05.32 सेकंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। रवि वीरा वेंकट बुडिगिना और अली इमाम ने भारत के लिए पैरा तैराकी के जो अभियान की शुरुआत कर दी है ये फ्री स्टाइल हीट से हुई है, और इसके बाद जो फाइनल है ये भी आज को देर रात को ही खेला जाना है। इसके साथ साथ हेमंत, दोपहर में आज जिम्नास्टिक के भी मुकाबले थे, तो उन जिम्नास्टिक के मुकाबलों का जो अभी सब डिवीजन समय है वो हम दो में रखा गया है, तो उसमें हमारे तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर दास और योगेश्वर सिंह जो हैं वो यहां पर अपना जो मुकाबला है वो खेलेंगे, और इसके जो रिजल्ट हैं हम लगातार अपने सुनने वालों को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम लगातार आपके समक्ष लेकर आते हैं हर एक वो खेल की जुड़ी हुई खबर जो आप सुनने के इच्छुक होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस वक्त क्योंकि अब समय हो चुका है हेमंत के पास चलने का, तो हेमंत बताइए क्या है आपके पिटारे में।
2: कविता, बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले की, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने 13.2 ओवरों में ही 3 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच जीत लिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय तेज गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया। मैच की पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों के आगे रन बनाने में भारी संघर्ष करना पड़ा। वेस्ली मेदेवेरे ने सबसे अधिक 34 गेंदों में 39 रन बनाए, जबकि तादिविनाशे मारुमानी ने 27 रनों की पारी खेली। अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा इस मैच में कोई बड़ा कमाल कर पाए और सिर्फ 4 रन ही बना सके। भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी अनुशासित रही। मयंक यादव ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनका साथ देते हुए प्रिंस यादव ने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को भी 1-1 विकेट मिला। इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवरों में 125 रन पर ही सिमट गई। 126 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक रुख अपनाया। ओपनिंग करने आए 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली और सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 शानदार छक्के जड़े। वैभव का ये प्रदर्शन दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को बहुत अच्छी तरह संभाला। किशन ने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों की नाबाद पारी में 3 चौके जड़े। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैच में कभी भी दबाव महसूस नहीं होने दिया। टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर 126 बना लिए और 40 गेंद शेष रहते मैच को अपने नाम कर लिया। ये जीत भारतीय टीम के लिए बेहद खास थी। हाल ही में T20 सीरीज में मिली लगातार हार और खराब फॉर्म के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज कर वापसी की है। 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी द्वारा 19 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक इस मैच का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू रहा, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया। मयंक यादव को उनकी शानदार और किफायती गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को दबाव में दिया था। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। इस शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। सीरीज का दूसरा और तीसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर यानी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम को सीरीज में बने रहने के लिए अगले मैच में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करना होगा, जबकि भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मैच के बाद मैन ऑफ द मैच रहे मयंक यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट Zimbabwe that this is a good help for the fast bowler in the wicket. So this is the first time I'm playing in Zimbabwe and Harare. So yeah, it's a great feeling. And when I was bowling there and I was getting a lot of

0: fell from the wicket, and I think that helped a lot in the team, for the team. Yeah,
1: feels great, especially like now after the first game we had a good result, and going into the second T20, obviously like it will be, I will take as a challenge again to come again and perform again for the team and to help the team to win again.
2: तो यहाँ पर क्रिकेट की खबरों को ही आगे बढ़ाते हुए आपको अब बताते हैं एक और क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर के बारे में. तो फिलहाल 9 जून से ओवल में खेला जाएगा WTC का फाइनल. जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने बताया कि साल 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल 9 से 13 जून तक द ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इंग्लैंड ने पिछले साल 2027, 2029 और 2031 के अगले तीन WTC फाइनल की मेजबानी के अधिकार हासिल किए थे. अब तक खेले गए WTC के तीनों फाइनल भी ब्रिटेन में ही आयोजित हुए हैं. यह दूसरा मौका होगा जब द ओवल WTC फाइनल की मेजबानी करेगा. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2027 में होने वाली एशेज सीरीज का पहला मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. पहला टेस्ट 18 से 22 जून, दूसरा लॉर्ड्स में 30 जून से 4 जुलाई, तीसरा एसबेस्टन में 8 से 12 जुलाई, चौथा साउथैम्पटन में 21 से 25 जुलाई और आखिरी ओवल में 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच खेला जाएगा. और अब जो है हम आपको लेकर के चलते हैं क्रिकेट के मैदान से निकलकर सीधा शूटिंग रेंज पर, जहां पर जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने शूटिंग जगत के लिए एक कारनामा जो है वो कर दिया है और जो मेडल के साथ खाता इंडिया का खुल चुका है. जी हाँ, चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, जो भारत का इस टूर्नामेंट में पहला मेडल भी है. 22 साल की भारतीय शूटर ने कुल 243.4 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और ये जीतने के बाद गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गई. हांगझू में मिला ये सिल्वर मेडल संयम का दूसरा ISSF वर्ल्ड कप मेडल था. इससे पहले उन्होंने कतर के दोहा में हुए 2025 ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था. चीन की याओ 243.6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि ईरान की ओलंपियन हनीह 221 पॉइंट के साथ तीसरे पायदान पर रही. कई बार ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुकी भारत की सुरुचि सिंह फाइनल में कुल 137.6 पॉइंट के साथ सातवें पायदान पर रही. वहीं क्वालिफिकेशन राउंड में 589 पॉइंट के साथ दसवें स्थान

being a records man. Producing busy.

0: और उसका वास्तव में कार्य कृषि का हो। वो अगर मान लीजिए कि कोई खेत में भवन भी बना हुआ है, उसको आप किसी के अनाज के लिए रखने के लिए दे रहे हैं, या खेती के लिए उसको कई बार होता है बीजों को संरक्षित करने के लिए भी देते हैं, तो वो जो आय होगी वो कृषि आय होगी।
1: शंकर जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए यदि खेत में कोई फसल या सब्जी किसान भाई उगाता है और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके अन्य उत्पाद बनाता है, तो क्या वो आयकर के दायरे में आएंगे?
0: बिल्कुल, जब कृषि आय से वो दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है और उसकी स्थिति बदल जाती है, तो वो निश्चित रूप से जो है कृषि आय से बाहर हो जाएगा और उस पर जो है नॉर्मल टैक्स जो होते हैं वो सब एप्लीकेबल हो जाए।
1: तो उस पे क्या टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा हमारे किसान भाइयों को बताएं?
0: टैक्स नॉर्मल रेट से लगता है, जैसे कि अब आजकल दो रिजिम चल रहे हैं इनकम टैक्स में, एक पुराने वाला है एक नए वाला है। नए वाले में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, पुराने वाले में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजन को जो पुराने वाले में है उसमें 3 लाख की छूट है, और सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ज़्यादा है उनको 5 लाख की छूट है। तो इस प्रकार से आयु के हिसाब से ओल्ड रिजिम में है और नए रिजिम में 4 लाख तक की छूट है। और इसके कृषि से अगर कोई भी आय होती है और वो केवल कृषि से ही केवल आय है तो टैक्स नहीं है।
1: कई बार हमारे किसान भाइयों को पता होता है कि भाई ये जो मैं उत्पाद बना रहा हूँ इस पर टैक्स लगेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कब मुझे टैक्स जमा करना है, कितना टैक्स जमा करना है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, इसमें अगर मैं बताना चाहूँगा कि क्या कृषि आय है और क्या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसान भाई के लिए। कृषि आय जो होती है वो फसल की बिक्री से, बटाई का कोई हिस्सा आ रहा है उसको, या नर्सरी से उगाए गए पौधे। और कृषि आय जो नहीं है, जैसे कि कई लोग डेयरी का काम करते हैं जो कि कृषि आय नहीं है, मुर्गी पालन का करते हैं, मधुमक्खी पालन का करते हैं,
1: यानी खेती से जुड़े ये सब काम जो करते हैं।
0: हाँ जी, ये खेती से ही, और उनको ये लगता है कि इस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कृषि से आय नहीं मानी जाती है। और कृषि की जो एग्रीकल्चर लैंड के बेचने से कैपिटल गेन होता है वो भी कृषि आय में नहीं आता है।
1: तो जब एक बार ये तय हो जाता है कि ये कृषि आय में नहीं है, उस पे किस हिसाब से कब टैक्स जमा कराना चाहिए और कितना टैक्स जमा कराना चाहिए?
0: कृषि आय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि हम पता लगा सकते हैं जुताई हो रही हो, बुआई हो रही हो, सिंचाई हो रही हो, तो ये कृषि आय है। और जो जहाँ तक सवाल टैक्स का है, तो टैक्स के इनिजुअल्स की होती है उनकी रिटर्न, अभी जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट है और उसमें इनकम भी उनकी इंक्लूड है। अगर केवल कृषि से आए हैं तो मैं

0: राय यही दूंगा, अगर कृषि से अच्छी आय होती है उन्हें तो वो अपना रिटर्न 31 जुलाई से पहले जमा करवाएं कि
1: और उसके
0: वो।
1: लिए टैक्स क्या पहले जमा कराना पड़ता है या रिटर्न के साथ ही टैक्स जमा किया जाता है?
0: देखो कृषि, अगर मैं किसान भाइयों की बात करूं और केवल कृषि से आई है तो टैक्स नहीं है, और अगर मैं ये देखता हूं कि उसको कहीं और मद से भी आए हैं, कि कई लोग होते हैं कि कृषि का काम भी कर रहे हैं, डेयरी का काम भी
1: जी
0: कर रहे हैं, तो उस अवस्था में उनका जो आय होता है वो मिश्रित आय में आ जाता है, तो इसमें टैक्स निकालने का अलग तरीका होता है। तो उसमें पहले कृषि आय को लेते हैं, मैं एग्जाम्पल दे लेता हूँ इसमें,
1: जी
0: कि मान लीजिए आपको कृषि से 10 लाख रुपए सालाना की आय है और गैर सरकारी कृषि से आय जो है वो 6 लाख रुपए की है,
1: जी
0: तो सबसे पहले 16 लाख पर टैक्स निकालेंगे। उसके बाद में जो ओल्ड रिजिम था, जो ओल्ड सिस्टम है, उसमें 2.5 लाख और प्लस कृषि से आए 10 लाख, तो 12.5 लाख पे टैक्स निकालेंगे। तो एक तो 16 लाख पे टैक्स निकला, एक 12.5 लाख पे टैक्स निकला,
1: जी
0: इनका जो डिफरेंस होगा वो जो है टैक्स लगेगा। इस अवस्था में होता क्या है कि एक पार्शली टैक्स जाता है और स्लैब रेट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
1: तो ये टैक्स पहले जमा कराना पड़ता है या रिटर्न के साथ ही करा सकते हैं?
0: रिटर्न के साथ ही करा सकते हैं, वैसे जो है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 15 जून को पहला एडवांस टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद में जो है 3 महीने बाद फिर जमा होता है, फिर 3 महीने बाद, और फिर 31 मार्च को अगर कोई बाकी रह गया है तो वहां पर जमा करवा दें, उससे इंटरेस्ट नहीं लगता है।
1: जी अच्छा शिवशंकर जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार जैसे टैक्स जमा करा दिया तो रिटर्न क्या दोनों किसान भाइयों को भरनी पड़ती है, जो हमारे किसान भाई खाली खेती कर रहे हैं या जो हमारे दूसरे भाई खेती के साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं?
0: तो किसानों को रिटर्न भरना जो है वो ज़रूरी होता है, वैसे तो कंपलसरी नहीं है उनके लिए, लेकिन उनके लिए फ़ायदा यह है कि जैसे बैंक से ऋण लेना है, कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किसान क्रेडिट कार्ड चलते हैं
1: जी
0: आजकल, और फिर क्या होता है कि कृषि में मुख्यतः कैश का समावेश होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ चालू कर देता है,
1: जी
0: तो उसको रोकने के लिए मेरा जो सलाह यह है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दे, जिससे कि उससे किसी प्रकार की उसको नोटिस या परेशानी ना आए।
1: रिटर्न भरने के साथ साथ उसे अपने पास क्या क्या दस्तावेज रखने चाहिए जिससे कि आगे जाके उसको दिक्कत ना हो?
0: उसको अपने कृषि से संबंधित जो बिक्री होती है उसका दस्तावेज रखना पड़ेगा, कृषि से संबंधित जितने व्यय किए हैं उसने उसकी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी उसको, और जैसे वो इंटरेस्ट भी देते हैं और प्लस जो वहाँ पर काम करवाते हैं कृषि में, बीज का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, और भी खर्चे होते हैं, उनका जो है वाउचर वगैरह बनवा के और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। जैसे अड़तियों से बेचते हैं तो अड़तियों की जो रसीद होती है वो, प्लस जब वो कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसका रिकॉर्ड अपने पास में रखना चाहिए।
1: और रिटर्न जमा समय किन किन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह से रिटर्न जमा कर सकते हैं?
0: ये रिटर्न जो है इसी तरीके से जाती है, और दस्तावेज जो मैंने अभी बताए वही लगेंगे उनको, और इसके अलावा जो है कोई खास दस्तावेज उनको रखने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल उनको ये होना चाहिए कि वो अपनी आय को स्पष्ट रूप से घोषित कर पाए, उससे संबंधित सभी दस्तावेज उनके पास होने चाहिए।
1: इसके बाद अगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए कोई कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी जमीन पे उसको लीज पे भी दे देते हैं, किराए पे भी दे देते हैं, तो वो जो इनकम होगी वो इनकम क्या उस टैक्स के दायरे में आएगी?
0: नहीं, वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आएगी, वो भी कृषि भूमि से आय मानी जाएगी, और उसके लिए उनको अपने कृषि का रिकॉर्ड दिखाना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई उनके पास इतनी ज़मीन है, और वो रिटर्न एग्रीमेंट जिसके साथ उन्होंने किया है उसके साथ में एग्रीमेंट।
1: इसके अलावा और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को टैक्स से संबंधित?
0: मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 60% आय वो कृषि से मानी जाती है और 40% आय जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है और वो बिजनेस के दायरे में चली जाती है, तो इस प्रकार के जो किसान भाई हैं हमारे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाई यही सोचते हैं कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में अच्छी खासी इनकम है उनको अपना आयकर रिटर्न समय पे जमा करना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स की परेशानी से बच सकें।
1: शर्मा जी, रिटर्न के साथ साथ और ये आयकर के साथ साथ जीएसटी पर भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा संदेह रहता है। ये जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या अंतर है? क्या किसान भाइयों पर ये भी लागू होती है?
0: ज्यादातर जो एग्रीकल्चर

0: वो जानकारी है उसको कहीं रिकॉर्ड करके अपने पास रखें, क्योंकि सुनने के बाद में तो भूल जाते हैं। तो यही उनसे निवेदन है कि वो अपने पास में इसको संजो के रखें, और जब कभी भी उनको कोई परेशानी आती है तो इसको सुने।
1: किसान बहन भाइयों, ये तो शिवशंकर शर्मा जी ने बताया कि भी कि कौन कौन कौन से किसान टैक्स के दायरे में आते हैं, इसके अलावा कौन सी जो आय है वो कृषि आय में आती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना और उसी हिसाब से आपने अपने टैक्स जमा करने हैं, अपने रिटर्न भरनी है। शिवशंकर जी, आज आप यहाँ आए, हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए टैक्स संबंधी बुनियादी जानकारी। सुनील कुमार बातचीत कर रहे थे शिवशंकर शर्मा से। उन्होंने ये बताया कि कृषि की सारी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, लेकिन जब कृषि उत्पादों को बदल के बेचा जाता है, गेहूं पैदा हुआ, आटा बनाया, लेकिन वो भी अगर आटा सादे तरीके से बेचा जा रहा है तो वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर ब्रांडेड बना दिया, पैकेट बना दिया, ब्रांड क्रिएट कर लिया, तो हमारे किसान भाइयों को भी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बुनियादी जानकारी, ये फ़र्क रहा। और टैक्स हम सभी को देना चाहिए, टैक्स फाइल करने का बड़ा फ़ायदा है।
3: और देखिए, अगर हम बात करें योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता, विशेषकर गरीबी और मध्यम वर्ग में जो लोग आते हैं, उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को 50 से 90% तक कम कीमतों पर उपलब्ध कराना, और यही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप इन दवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ
2: जी प्रियंका
3: साथ
2: बहन, बहुत पते की बात आपने बताई, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ दवाई जो है ये बुनियादी चीज़ है, और हर मौसम में हर वक्त लोगों को दवा की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन हमारे गरीब भाई जो हैं, किसान भाई जो हैं, या जिनकी आय कम है ना, उनका भी ख्याल रखा गया है। इसके लिए सरकार ने खास स्कीम के तहत जन औषधि केंद्र खोले हैं देश भर में। करीब 18-20 हज़ार जो है कि जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, और बड़ी चीज़ यह है कि इनकी गिनती जो है, तादाद लगातार बढ़ाई भी जा रही है। और जो है कि वहाँ पे जाके आप सस्ती दवाएं, जैसा कि बताया प्रियंका बहन ने, कि पेटेंट कंपनियों के बड़े जो है कि दवाइयाँ होती हैं जो महंगी होती हैं, उनको सरकार ने जेनरिक उस दायरे में ला के 50% से 90% तक कम दाम पे उपलब्ध कराने का काम कर रही है।
3: और आप अपने नज़दीकी केंद्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप जन औषधि सुगम ऐप पर जाके कहाँ कहाँ पर ये केंद्र स्थापित है उनके बारे में आप जान सकते हैं।
2: बिल्कुल बहन, तो अब एक काम करते हैं कि अपने बहनों भाइयों को एक बार फिर से उनका मनोरंजन कराते हैं और ले चलते हैं

ये आप सुन रहे थे रागिनी किस्सा हीर रांझा, योगेंद्र निमटाना की आवाज़ में। तो बहनों भाइयों, अब वक्त कहता है कि हम आपसे इजाज़त लें। इसी के साथ सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर हैं और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल

0: सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले हमारे तमाम ग्रामीण किसान भाइयों बहनों को राम राम।
1: देखिए शाहिद भाई, हम बात कर रहे थे कि बारिश का मौसम है और उस समय कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कि हमने डायरिया की बात की थी कि ऐसे
0: जी
1: में उल्टी दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे खान पान को अपने रूटीन में शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और जो पचाने में भी आसान हो, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए बहन, इसमें क्या है ना कि इस सीज़न में और हर सीज़न में वैसे भी फल सब्जियां और मिलेट्स जो होती ना, जो हमारा थीम भी है कि लोक संगीत के साथ हम इनकी भी बातें करते हैं, तो आज सिर्फ बातें नहीं हैं, अमल की भी जो है कि ज़रूरत है। तो फल सब्जियां जो है और मिलेट्स यानी मोटा अनाज जो है, जो हमारी संस्कृति का कह लें कि उसकी पहचान भी रही है ना, तो जब उसको खाया जाता था, जब वो चलन में था अच्छे, तो लोगों को दवाइयाँ ज़िंदगी में, कोई लोग कहते थे कि मैं तो ज़िंदगी में एक बार दवाई खाई थी, वो मेरे दादा तो दवाई खाते ही नहीं थे, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। हकीकत में वो इम्यूनिटी जो है ना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाती हैं। तो आपने बताया कि फल सब्जियां जो हैं आज की के दौर में जो है कि अभी देखा जाए तो सीज़न जिसको हम कह सकते हैं दौर के हिसाब से सीज़न, तो ये जो मौसम है, हर मौसम के लिहाज से जो प्रकृति है, हर मौसम के लिहाज से, हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो जहाँ पे है उसके हिसाब से वो उत्पाद देती है, ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनका जो है कि सेवन करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अगर सब्जियों की बात करें तो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे घिया है, तोरई है, करेला है, इन सब में भरपूर मात्रा में जो पोषक
0: बिल्कुल
1: तत्व
0: सही कहा
1: होते
0: आपने,
1: हैं।
0: इस सीज़न की ये पहचान है, बेल वाली जो सब्जियां हैं, जो प्रतान वाली सब्जियां हैं, इनमें ये इसी मौसम में होती हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि इनके अंदर आपको विटामिन डी, उसके अलावा जो है कि कई तरह के मिनरल्स जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है इस सीज़न में ख़ास तौर से, वो प्रचुर मात्रा में मिलती हैं।
1: बिल्कुल, तो ज़रूर आप मौसम के अनुसार अपने खान पान का चयन करें। और जामुन इस समय बाज़ार में बहुत है, आसानी से आपको मिल जाएगी और इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अधिक है। इसमें हमारा जो ब्लड शुगर होता है कंट्रोल रहता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जामुन का सेवन भी आप बहुत कीजिए, क्योंकि ये एक औषधीय फल है जिसके
0: जी
1: खाने में
0: हाँ,
1: भरपूर
0: आपने बड़ी बात
1: लाभ
0: बताई।
1: आपको मिल सकते हैं। और अगर हम अभी हमारा कृषि जगत कार्यक्रम जो होता है उसमें हम अपने किसान भाइयों के लिए विशेष जानकारी भी लेकर आते हैं। इफको के नाम से हम सब वाकिफ हैं, ये एक ऐसा संस्थान है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए न सिर्फ कम दाम पर बल्कि उच्च कोटि के जो उत्पाद हैं वो

0: हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाता है। तो सुनते हैं ये बातचीत जिसका विषय है किसानों के लिए इफको एमसी की भूमिका। तो सुनते हैं ये बातचीत।
1: किसान बहनों भाइयों, ये तो आप जानते हैं इफ्को किसानों की संस्था है। और भाई, इफ्को किसानों की संस्था के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हैं, एक सहयोगी संस्था है इफ्को एमसी, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देती है, प्रदान करती है। और ये उत्पाद हैं जो भी कोई बीमारी लगती है किसानों तक पहुँचाती है। क्या कुछ काम चल रहा है, और एक भारत सरकार का अभियान चला है खेती बचाओ, इसमें इफ्को एमसी की क्या भूमिका, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इफ्को एमसी के प्रबंध निदेशक मनोज वार्ष्णेय जी। मनोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे, जिससे खेती बचाओ अभियान में आप उनको भी जागरूक कर सकें?
2: नमस्कार किसान भाइयों। इफ्को मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम, जिसको इफ्को एमसी के नाम से जाना जाता है, कृषि रसायनों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्था ने ऑलरेडी पिछले साल 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए और अब इस साल व्यापार में कार्यरत है। आपके इस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि इफ्को एमसी के कुछ विषय जिन पे काम करता है, और उनको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए, तो मैं सिर्फ 4 शब्दों में इफ्को एमसी की भूमिका को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले है सही दवा। सही दवा मतलब आपके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए जिन कृषि रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी उच्च कोटि के कृषि रसायनों को आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करती है इफ्को एमसी। सही दवा के बाद दूसरा है सही दाम। बाजार में जितने भी कीटनाशक या कृषि रसायन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से दाम चार्ज किए जाते हैं, और इफ्को एमसी का जो पूरा उद्देश्य है, आपको सही दवा सही दाम पे उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इसमें सबसे अगर खास बात देखा जाए तो सबसे ये है कि इफ्को एमसी के सारे उत्पाद फिक्स्ड एमआरपी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिक्स्ड एमआरपी से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जो दाम उसके ऊपर अंकित है, उसी दाम को आपको दुकानदार को या सहकारी संस्था को पे करना है, तो जिससे आपको सही दवा सही दाम पर उपलब्ध होती है। साथ में तीसरा चीज़ है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता मतलब जितने भी कृषि रसायन हैं, इफ्को एमसी की क्वालिटी पॉलिसी है। तो अगर हम इन तीन चीज़ों को देखा जाए, सही दवा सही दाम उच्च गुणवत्ता, ये तीन ध्येय है इफ्को एमसी के। किसान को और आपकी खेती के संरक्षण को, जो भी आपकी मेहनत है, उस मेहनत को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। और इन सब के साथ एक और अनूठा पैगाम है इफ्को एमसी का, किसान सुरक्षा। इफ्को एमसी के कोई भी उत्पाद लेते हैं आप, उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। 16,000 रुपये तक के उत्पाद इफ्को एमसी के अगर आप खरीदता है कोई एक किसान, तो उन उत्पाद खरीदने पे करीब 1,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा जो है किसान को मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत है आपके पास, आपके पास एक बिल होना चाहिए, और इसकी जो समय सीमा है पूरा 1 साल है। 1 साल में आप टोटल 16,000 रुपये के अगर उत्पाद खरीदते हैं, 1,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इन सब आधारों के ऊपर इफ्को एमसी खड़ा है, और हमें बहुत हर्ष है कि इफ्को एमसी ने पिछले साल 2025-26 में रिकॉर्ड टर्नओवर किया था। तो इसमें आप सब लोगों का प्यार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार इफ्को एमसी को इतना पसंद करने के लिए। रही बात खेती बचाओ अभियान, जैसे इस समय ग्लोबल वॉर सिचुएशन की वजह से कृषि रसायनों के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो हम अपनी कंपनी की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी करके आपके उत्पादन कॉस्ट को, आपकी खेती की लागत को कैसे कम रख सकें। तो इसमें हमारा जो प्रयास है, हम समय से कृषि रसायनों को या उनके टेक्निकल्स को या फॉर्मूलेशन प्रोडक्ट को टाइमली परचेज कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में आपके कृषि उत्पादन में कोई भी तरीके की समस्या ना आए। तो ये ऐसा इफ्को एमसी का इस समय प्रयास चल रहा है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है कि आज के समय में जैविक उत्पादों की बहुत ज़रूरत आ रही है। मार्केट इंक्रीज हो रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे जैविक उत्पाद मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इफ्को एमसी ने भी अपने जैविक उत्पाद बाजार

0: में उतारे हैं और जिनका नाम है जेन नेक्सा। जेन मतलब बैलेंस और नेक्सा मतलब नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो जेनेक्सा श्रृंखला को बाजार में उपलब्ध कराया है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जेनेक्सा सीरीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिससे कृषि रसायनों के साथ साथ जैविक उत्पादों का, जिसको बोलते हैं बायो इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन की इस कॉन्सेप्ट को, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिला सकें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जेनेक्सा श्रृंखला के उत्पादों का भी प्रयोग करें अपनी खेती में। इसी में एक उत्पाद है माइकोजेन। माइकोजेन जो एक बहुत ही उच्च कोटि का माइकोराइजा प्रोडक्ट है। हमें पता है आज के समय में खादों की उपलब्धता में यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के चैलेंज हैं। तो अपनी फसल के पोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकोजेन जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से माइकोराइजा जड़ों के ऊपर एक बाहरी और एंडो माइकोराइजा डेवलप होने की वजह से आपके पास फायदा क्या होगा कि कम पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगा और साथ में आपके उत्पादन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देगा। तो मुझे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन ऐसे जैविक उत्पादों का आप इस्तेमाल करें और जिससे खाद की रहने वाले संकट को या खाद की कमी या उसकी कम उपलब्धता को भी आप एड्रेस कर सकें। रही बात आने वाले समय में किस तरीके का प्रोडक्शन, मॉनसून बहुत, जो IMD की फोरकास्ट के हिसाब से कि मॉनसून कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सचेत रहें और सही तकनीक से अपने कृषि और अपने फसल उत्पादन को करें। और अगर हम सचेतता के साथ और सही ज्ञान के साथ अपना फसल उत्पादन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से अपने, एक तो फसल उत्पादन को खोएंगे नहीं और खेती से होने वाली आपकी आय किसी भी तरीके से कम नहीं होगी।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि सही तकनीक और सही समय पर जानकारी के द्वारा आप अपनी खेती को बचाएंगे, खेती में काम करेंगे तो जरूर आप खेती के साथ साथ आप अपने उत्पादन को भी बरकरार बनाए रखेंगे। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेत बचाओ अभियान में इफको एमसी की भूमिका। इस पर बातचीत कर रहे थे मनोज वाष्णेय और जानकारी दे रहे थे इफको एमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज वाष्णेय। तो किसान बहनों भाइयों, अब आइए आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर से ये रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत। और सचमुच हमारे किसान भाई हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं और हम तक वो अन्न पहुँचता है, तो वाकई ये तारीफ के काबिल ही काम है।
1: सही, ब्रह्मपाल
0: बिल्कुल
1: नागर ने सच कहा कि किसान हमारा दुनिया में
0: अन्नदाता
1: दूसरे
0: है।
1: दर्जे का
0: बिल्कुल
1: भगवान है। वो जो है कि अनाज भी पैदा करता है, पेट भी भरता है, दवाइयों के लिए जो है कि औषधियाँ, औषधियों की जो वनस्पतियाँ हैं उनको भी पैदा करता है और कई तरह से पोषण देता है, तो
0: बिल्कुल
1: वो भगवान हुआ।
0: बिल्कुल। और देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना की अगर हम बात करें तो एक ऐसी योजना है जो कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने में लगी है। इसके तहत उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उनके रेट भी बाज़ार में अच्छे मिलते हैं। तो
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल सही कह रही हैं प्रियंका बहन। दरअसल ये जो है कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना जो है ना, इसमें जो है कि दरअसल जो कृषि जो है कि ग्रेजुएट्स हैं, BSc AG करने वाले ऐसे लोगों को जो है कि इनकी मदद ली जाती है और इनको साथ मिला के उन्नत तकनीक जो है, ठीक है, जैविक तकनीक, मतलब केमिकल रहित जैविक खाद, जैविक तरीके से पारंपरिक और आधुनिक जो है कि ट्रीटमेंट के साथ जो है कि कृषि पैदावार करना, ताकि वो गुणवत्ता पूर्ण हो, अधिक उत्पाद मिले। और बड़ी चीज़ यह है कि उसकी

0: ऊंची कीमत मिले। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये कि हमारे किसान भाइयों बहनों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पैदा करें और कैसे इसकी मार्केटिंग हो उस लेवल तक, मतलब इसको कह सकते हैं कि किसान एवं ग्रामीण उद्यमिता, ये स्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़े पते
1: बिल्कुल
0: का
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही
1: इसमें मुख्य रूप से जो बच्चे इसमें डिग्री ले रहे हैं, जो स्नातक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ डिग्री न लेके उनको ऐसा कौशल विकास दिया जा रहा है जिससे कि वो उद्यमिता की तरफ जाएं और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आगे उनको रोजगार की संभावना खुद भी मिले और दूसरों को भी वो रोजगार देने वाले बने।
0: ये तो है ही। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसान बहन भाई जो भी हैं उनको ये पूरी एंड टू एंड, मतलब कैसे बीज बोया जाए, कैसे खेत तैयार किया जाए, कैसे कटाई की जाए और कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, मतलब बीज बोने से लेके पैसा हाथ में पाने तक पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ये उसी की का प्रशिक्षण, उसी के मतलब उद्यमिता विकास है एक तरह से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कल शनिवार है और शनिवार को आपको याद दिला दें कि हमारा लोक संगीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे श्रोता हम तक अपनी पसंद के गीत और कलाकारों को पहुंचाते हैं और हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने संबंधी फ़ोन नंबर और रिकॉर्डिंग का टाइम भी बताया जाएगा, तो 6:30 पर सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपचार।

0: उमरिया मुफ्त में हुई। ये उपदेश आप सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में। तो ग्रामीण किसान बहनों भाइयों, इसी के साथ आपसे हम लेते हैं इजाज़त। आप सभी को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं कुछ गीत गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत सी गजलों का। ये पहली गजल आप सभी के नाम चंदन दास की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गजल और कव्वाली के अंतर्गत खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए दो अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंजूरी दी गई। विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
5: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
4: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की वार्ता करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
6: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कड़े विधेयक को लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद भवन परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं।

0: हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सवेरे 7:30 बजे से जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था उनमें से 2 मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 जारी कर दी है। इसमें भारत में टेलीविजन रेटिंग विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज श्री वैष्णव ने कहा कि ये नीति दर्शकों के मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करती है।
2: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 ने 16 जनवरी 2014 के भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का स्थान ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें नेटवर्थ मानदंड को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए करना, कनेक्टेड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर प्रौद्योगिकी तटस्थ दर्शक मापन और मीटर वाले घरों की संख्या को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके नमूना आकार में वृद्धि करना शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि निर्धारित सुरक्षा उपायों में क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्यता, हितों के टकराव को जन्म देने वाली परामर्श या सलाहकार गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकताएं, ऑडिट और पारदर्शिता दायित्व शामिल है ताकि रेटिंग एजेंसियों की कार्यात्मक और परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज श्री प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग और डिजिटल पहुंच में तेजी से विस्तार के साथ बच्चों का अनुचित सामग्री और अन्य ऑनलाइन जोखिम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में लघु उद्योग भारती, उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने और उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की प्रगति के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि गाजीपुर ड्रेन में वर्षों से भारी मात्रा में गाद जमा है जिससे इसकी पानी ले जाने की क्षमता में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नालों में इसी तरह की आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे गाद निकालने का काम तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने आज विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए भंडार रखने की अनुमति देने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक

0: और दृढ़ संकल्प नए भारत की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि नीट यूजी 2026 में 11,20,000 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ये फेलोशिप राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े ने युवाओं को सार्वजनिक नीति, सुशासन और संसदीय प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इन युवा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह, नए विचार और समर्पण भाव अगली पीढ़ी के नेतृत्व पर देश को विश्वास को और मजबूत करते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकता अनुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल है, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने बताया कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों और सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, पीसीआर तैनाती और दुर्घटना रोकथाम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी में आने वाला प्रत्येक शिव भक्त स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और अपनत्व से घिरा हुआ महसूस करे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को आज सवेरे एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महापौर कार्यालय ने बताया कि आज सवेरे 10:23 पर एक अज्ञात स्रोत से ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली। धमकी मिलते ही बिना किसी विलंब के संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। महापौर कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय के प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन जांच की गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर अन्य उपकरणों में लगाते थे और यूपीआई सक्रिय कर खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद वे धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से 10,000 रुपए नकद के साथ 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान आयकर विभाग के कार्य और उसके योगदान का स्मरण किया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई और दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

0: मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है, ठीक लीजिए 8:00 हुए हैं 16 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ प्यारे से फिल्में गीत, जिसमें आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का हम आशा जी के साथ, भूपेंद्र की आवाज के साथ, और गीत किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतमालिका कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हम समाचार, पहले हिंदी अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
6: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
2: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में

0: नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई।

0: Radhanpur in Patan district recording over 9 inches of rainfall and Santalpur witnessing nearly 9 inches. Our correspondent reports Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi are continuously monitoring the flood situation in South Gujarat. A report.
1: Rescue and relief operations are underway on war footing in all the flood-affected districts, including Navsari, Surat and Valsad. In Navsari, joint teams of NDRF, SDRF and Indian Army have evacuated over 14,000 residents from flood-affected areas. In Ahmedabad, Chief Minister Bhupendra Patel inspected heavily affected areas including Amli and Ghuma and held a high-level review meeting with Health Minister Rishikesh Patel. The CM directed authorities to clear the waterlogged housing societies at the earliest. Meanwhile, train movement on Western Railway has been severely affected even today due to the waterlogging on Billimura rail section and between Charodi and Viramgam stations. As a precautionary measure, several major train services have been cancelled today. Meanwhile, IMD has predicted widespread heavy rainfall across the state for tomorrow and issued red alert for 7 districts in the state. Aparna Khont, Akashwani News, Ahmedabad.
0: In Maharashtra, heavy rainfall over the past 2 days has triggered flood-like conditions in several parts of Palghar district, disrupting connectivity in villages across Dahanu, Talasri and Palghar talukas. India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall tomorrow in parts of Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Parts of northern states, northeast India, coastal Karnataka, Gangetic, West Bengal and south interior Karnataka are also expected to receive moderate to heavy rainfall tomorrow. Thunderstorms and lightning conditions are expected in the rest of India. In Himachal Pradesh, 13 people were killed after a vehicle they were travelling in was crushed by a massive boulder that fell from a hillside near Kadunala on the Udaipur Killer Road in Himachal Pradesh's tribal district of Lahol Spiti this afternoon. Deputy Commissioner and Chairperson of the District Disaster Management Authority, Lahol Spiti, Kiran Bhadana said the process of identifying the deceased is currently underway and detailed information will be shared only after official confirmation. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have expressed grief over the tragic incident. Union Minister Ravneet Singh has resigned from the ministry. President Draupadi Murmu has accepted his resignation with immediate effect. He was serving as Minister of State for Railways and Food Processing Industries. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and ended 0.43% down today. A report.
2: Sensex dropped by 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index lost 0.1% and the Small-Cap 100 Index fell by 0.3%. In the foreign exchange market today, the rupee ended nearly flat at 96 rupees and 56 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
0: Global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. On to sports. In shooting, India's Sayam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. The 22-year-old shooter scored 243.4 in the final to secure a podium finish against a strong international field. And in the Commonwealth Games in Glasgow, India's Srihari Natraj has advanced to the men's 50-meter backstroke semi-finals on the second day. Natraj clocked 25.52 seconds in the heats to qualify 14th among the 16 semi-finalists. The semi-finals will be held tonight. The world-famous Bahuda Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra was celebrated with immense spiritual fervour in the holy city of Puri in Odisha today. Millions of devotees witnessed the sacred return journey of the sibling deities from the Sri Gundicha temple to the Sri Jagannath temple amid elaborate security arrangements. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. K. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh, and new chemical park scheme to boost industrial growth. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखना अंदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सैनियम ने चीन में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज एक बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने की बात की गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई और बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी गई। जराए ने आकाशवाणी की खबरों के शोबे को बताया कि मुजवजा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैसेज के जरिए वजीर आजम मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वजीर आजम ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये एनटीए की मुकम्मल सफाई का एक हिस्सा है जो पेपर लीक के मामलों में तनाज़े का शिकार रही है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इम्तिहानात में धांधलियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए अहम इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन इस मामले पर पार्लिमानी बहस में रखना अंदाजी करती है तो उसे मुल्क के नौजवानों के गुस्से का सामना करना होगा। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीजेपी वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक सीजेपी के मुतालबात को इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन अहम मुतालबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को खत्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी।
4: लगभग दो घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
3: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے

0: वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझ कर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसां रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। शदीद बारिश ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आज शुमाली गुजरात में शदीद बारिश हुई। पाटन जिले के राधनपुर में 9 इंच से ज्यादा जबकि संतलपुर में भी 9 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी जनूबी गुजरात में सैलाब की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: गुजरात के सैलाब से मुतासर अजला नौसारी सूरत और वलसार में राहत और बचाव का काम जारी है। नौसारी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ फौज और मकामी गोताखोरों ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में सैलाब जदा इलाके से आज 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अहमदाबाद में वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल के साथ एक आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया और अम्बली और घुमा रिहायशी सोसाइटियों में भरे पानी को जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत जारी की। बिलमोरा रेल सेक्शन के रोड और विरंगम स्टेशनों पर पानी भर जाने से मगरबी रेलवे की खिदमात आज भी शदीद तौर पर मुतासर हुई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज मुतद्दिद रेलगाड़ियों को मनसूख करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने कल भी पूरी रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है और 7 अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: आंध्र प्रदेश के आबपाशी महकमे ने कहा है कि एल नीनो असर की वजह से रियासत में बारिश में काफी कमी आई है जिससे कृष्णा नदी में आने वाले पानी का बहाव कम हो गया है। विजयवाड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश आबपाशी महकमे के इंजीनियर इन चीफ के नरसिम्हा मूर्ति ने कहा कि रियासत में 51% कम बारिश दर्ज की गई है जबकि कृष्णा डेल्टा में मामूल से 49% कम बारिश का इंदराज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में आज दोपहर उदयपुर किल्लर रोड पर काडू नाला के पास पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की जद में आकर एक गाड़ी दब गई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन मोहतरमा किरण भड़ाना ने बताया कि महलूकीन की शिनाख्त का अमल जारी है और बाजाबता तस्दीक के बाद तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। शूटिंग में भारत की सैनियम ने चीन में ISSF आलमी कप में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। 22 बरस की निशानेबाज सैनियम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैन अवी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों के दूसरे दिन भारत के श्री हरी नटराज मर्दों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नटराज ने हीट्स के दौरान 25 सेकंड और 52 मिली सेकंड की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे 16 तैराकों में 14वां मुकाम हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले आज रात होंगे। इससे पहले भारत के रवि वीरा वेंकट बुडगीना और अली इमाम मर्दों के S13 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा तैराकी मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی

जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

Quando...

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।

विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 1:10:45 हुए हैं। गीत सुनहरे कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने गीत सुना फिल्म सौदागर से, और इस गीत में आवाज कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर सिंह की रही। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गीत।

अभी आपने गीत सुना मैंने प्यार किया फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। और कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप सुनेंगे।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ सुनहरे गीत। अभी जो गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म बेटा से, साथ में स्वर था विपिन सचदेवा का। आइए अब सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आपने ये सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दामिनी से। जब से तुमको देखा है सनम, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में एक बेहद ही खूबसूरत प्यारा सा गीत।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। तो आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम, यह आकाशवाणी दिल्ली का ए आई आर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 में और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम गज़ल। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गज़ल बेला सुलाके की आवाज़ में।

पंकज उदास की आवाज़ में गाई इस गज़ल के बाद ही अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में गज़ल सोचा नहीं।

0: जी के साथ ही आज का गजल का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं सिक्किल माला चंद्रा शेखर। आपने प्रस्तुत किया है राग कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध है। आपके साथ गटम पर संगत किया है बी पद्मनाभन ने और संगीत दिया है त्यागराजा ने।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन। कलाकार थे सिक्किल मालाचंद्र शेखर। आपने प्रस्तुत किया राग कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध था। रंबर संगत के अभी पद्म

रावण ने और संगीत दिया त्यागराजा ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पाँच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रोहित प्रसन्ना का बांसुरी वादन। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे सुबह 6:10 पर। 6:40 पर चिंतन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनिएगा। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 127। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में समाचार भी प्रसारित किए जाएंगे।

7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हरी तीरथ सिंह के गाए शब्द। ये तो वेरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा सुबह 7:30। आठ बजकर 45 मिनट पर सुनिएगा स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय रहेगा विश्व डूबने से बचाव दिवस 2026 पर विशेष। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर बी के राव और डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, श्री रणवीर शर्मा और संचालन करेंगे डॉक्टर जवाहर जैन। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे शालिनी मित्तल।

उसके 15 मिनट पर धरती आकाश ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 9:30 बजे मिट्टी दी महक कार्यक्रम लेकर आएंगी जसपाल कौर। फिल्म संगीत आपकी पसंद का समय रहेगा सुबह 10:10।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंगटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 18 जुलाई को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिक सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की बालिकाओं को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम का भार उठाकर सफलतापूर्वक ये पोडियम पे स्थान बनाया। नाइजीरिया के रिलुवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

0: बजकर 10 मिनट हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना? सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें। गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग 1 मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें। यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के